0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1674 AM।

0: बेस पसंद है।
1: यू आर लिसनिंग
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन
3: रेडियो हांजी।
1: स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ जी
1: हाँ वे सिडनी वालियो तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी
0: हाँ जी।
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
0: हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
4: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते।
5: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Thinking of building your dream home? Make it truly grand with Kaplan Homes Ultimate Prosperity Package. Get top 10 grand upgrades in one unbeatable package price, including 3-meter ground floor ceilings, 2.7-meter top floor ceilings, large porcelain tiles, premium timber look flooring, grand feature doors, stylish black finishes, and smart keyless entry. Plus, a lifetime structural guarantee. Limited time only. Visit Kaplan Homes online or one of our display homes in Sydney. TNCs apply. License 184812.

0: पूरा भी लव यू ऑल भावना को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुन रहे होना चाहिए। हांजी हांजी अभी ना कहना नाजी नाजी।
2: From India to Miami to the whole world, go ahead and slow it down, girl.

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au.
5: Thinking of building your dream home? Make it truly grand with Kaplan Homes Ultimate Prosperity Package. Get top 10 grand upgrades in one unbeatable package price, including 3-meter ground floor ceilings, 2.7-meter top floor ceilings, large porcelain tiles, premium timber look flooring, grand feature doors, stylish black finishes, and smart keyless entry. Plus, a lifetime structural guarantee. Limited time only. Visit Kaplan Homes online or one of our display homes in Sydney. TNC supply. License 184812.
0: ਲਾ ਦੇ ਫਿਰ।
6: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਏ

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: और जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हाय, दिस इज अरबाज खान एंड यू लिसनिंग टू हांजी रेडियो 167 4 AM।

3 सितंबर 2026 दिन वीरवार भारत ऑस्ट्रेलिया दुनिया जहान दियां खबरां लेके आए हैं। सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज़ दे नाल शुरुआत करते हैं। नेपाल हड़ां दे नाल जुड़ी खबर, वैसे अगे चल के आस्ट्रेलिया की खबर भी सांझी करांगे, पर नेपाल की सरकारी एजेंसी के मुताबिक भुटकशी ते त्रिशुली नदियां दे विच 26 अगस्त दे दिन आए भयानक हड़ां तो बाद हुण 8 दिन बाद बुधवार शाम तक 11,993 लोगों को बचाया जा चुका है। हालांकि बुधवार शाम तक दे आंकड़ों के मुताबिक 4,216 लोगों के नाल हाले भी कोई संपर्क नहीं हो सकया, यानी कि इन्हों लापता दसिया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि लापता लोगों की तलाश को तरजीह दी जा रही है। तो नैशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ तो यह भी दसिया गया है कि नेपाल दे विच इन्हां हड़ प्रभावित इलाकों के अंदर नेपाल की फौज, नेपाल की पुलिस और होरना फौजी टुकड़ियां दे घट्टो घट 21,314 कर्मचारियों को तैनात करके रखा हुआ है। खोज ते बचाव कामों दे विच नेपाल पुलिस दे 7,912 और जिहड़ा पुलिस बल जिन्हों के एक किस्म के नाल हथियारों का पुलिस बल कहा जा सकता, उन्होंने कोल 4203 जवान उन्होंने तैनात किए गए हैं। तो नेपाल की फौज के 9,99 लगभग 9,200 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षाकर्मी नदियों के किनारे हड़ प्रभावित बस्तियां सड़क से जमीन खिसकन तो बाद प्रभावित इलाकों के तलाशी मुहिम चला रहे हैं। कौमी आपदा एजेंसी ANE के मुताबिक हड़ तो बाद नेपाल की फौज ने 45 ते नेपाल पुलिस ने 25 ते सशस्त्र पुलिस बल ने 13 लापता लोगों नूं भाल भी लिया है। उथे ईरान के सेहत मंत्रालय के तरफ तो बुलारे हुसैन करमानपुर ने मंगलवार के दिन हुए अमरीकी हवाई हमलों के विच हुई मौतों ते जख्मियों की गिणती के अंकड़े जारी किए ने। खबर के मुताबिक करमानपुर ने दसिया है कि इन्होंने हमलों के विच मारे गए लोगों की गिणती 18 हो चुकी है ते जख्मियों की गिणती भी 142 तो पार हो चुकी है। मृतकों के विच एक बच्चा, 2 महिलावां शामिल ने। जख्मियों के विच 61 महिलावां 18 साल तो उम्र के घट्टो घट 44 हो लोग शामिल ने। अमरीका ने ईरान के विच कई हफ्तों के बाद दोबारा हमले शुरू किए ने और इसकी खबर कल दे दिन भी तुहाडे नाल असीं सांझी कीती सी कि अमरीका के राष्ट्रपति ये पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के उत्ते वह योजनाबद्ध तरीके दे नाल थोड़े थोड़े हमले कदे कदे करिया करनगे। बुधवार के दिन ईरान के सिरिक दे विच एक व्याह समागम के उत्ते हुए इस हमले के विच 4 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई सी। ईरानी रैड क्रिसेंट ने दसिया कि सिरिक दे विच एक व्याह समागम के दरमियान अमरीकी मिजाइल के टुकड़े आके डिगन के नाल इन्हां 4 लोगों की मौत हो गई सी। जवाब दे विच ईरान ने भी कार्रवाई की। ईरान ने भी जॉर्डन, कुवैत, इराक ते बहरीन दे विच अमरीकी टिकाणियां दे उत्ते मिजाइलों ते ड्रोन दागे। उत्थे साउदी अरब ने सोमवार रात अपने एक बड़े तेल टैंकर दे उत्ते ईरान की तरफ तो किए गए कथित हमले की निंदा की है। इस हमले दे विच फिलीपींस दे 2 मलाहां की मौत हो गई है। साउदी अरब की कौमी शिपिंग कंपनी बाहरीन ने बुधवार के दिन पुष्टि की कि उसके सिद्र नाम के एक जहाज़ के नाल एक घटना वापरी। समुद्री सुरक्षा के नाल जुड़ी हुई कंपनी के मुताबिक ओमान के मुसंदम टापू के उत्तर उत्तर दे विच सिद्र दे उत्ते कुछ प्रोजेक्टाइल्स के नाल हमले किए गए। इस दरमियान साउथ कोरिया के एक बड़े तेल टैंकर सैनिक

सर्वाइव करना करा लियो कितने मेरे ठीक ठीक जे गाने है कि नहीं कि यार आई नहीं रहे है एक मैनू नहीं त्यारे है के। वैसे एक दो पंजाबी गाने भी है ने पंजाबी कहता सच सारे ही पंजाबी ने पाकिस्तानी गाने भी आए है ने वह भी सुन के देख लें अबरार उल हक का बड़े चिर बाद गाना आया है तो एक होर है मुंडा अराहम वह भी गाना सुन के देखना अच्छा ये म्यूजिक डॉक्टर जीत ने दिता है।

क्या यार कमाल ही करता है, मैनू लग रहा है रबाब, सरंगी, हारमोनियम, तबला, ढोलक अज दे जमाने दे विच और गिटार सॉफ्टवेयर वाले जमाने दे विच आराम साहब जरूर सुने हो तुसी इस गाने नू उना दे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तो जाके। हम दो किनारे दरिया एक, दिल दो हमारे धड़कन एक, क्या बात है यार। बिच स्पेशली जेड़े इंस्ट्रूमेंट्स दा जिस तरीके दे नाल इस्तेमाल कीता है फेल है। हुण अज जो भी होर बाकी जो भी कुछ सुनांगे फेल है, पहला ही दस रहे हैं फेल है। गल बननी नहीं हैगी, हुण पता नहीं कोशिश कर लैने आ चलो अज दे इस प्रोग्राम नू जारी रखन दी। ते ड्राइव बैक शो च

राम साहब क्या कर रहे हैं, कैंड काम पूरा। देखो ये फर्क पता लगता है जदों वो सॉफ्टवेयर म्यूजिक बजाते ने ते किथे ये असल दे विच जड़े साज हैगे ने वो जदों आपस दे विच जदों अमलगमेशन होंदी है किथे चला गया सी वो म्यूजिक। हारमोनियम तबला ढोलक रबाब सरंगी बांसुरी गिटार सारे ओरिजिनली जेन्युइनली यूज किए हुए ने। ये लिखा है 8 बीट केड़वा रिदम, 8 साजां दा रिदम है ये।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: हांजी हांजी ओए हांजी हांजी
4: हांजी रेडियो।
5: फ्रंटियर ना सही ट्रिब्यून पढ़ो, कलकत्ता नहीं ढाके की गल करो, ऑर्गनाइजर ते पंजाब केसरी दे कातर लियाओ ते मैनू दसो कि इलां किधर जा रही ने, कौन मरिया है। समा कोई कुत्ता नहीं कि संगली फड़ के जिधर मर्जी धू लो। तुसी कहंदे हो माओ ये कहंदा है माओ वो कहंदा है, मैं पुछदा है माओ कहन वाला कौन है। शब्द गिरवी नहीं, समा गल आप करदा, पल गूंगे नहीं। तुसी रैंबल च बैठो जां प्याला चाह दी रेड़ी तो पियो, सच बोलो जां झूठ कोई फर्क नहीं पैंदा, भावें चुप दी लाश दी छल के भी लंघ जावो। ते ए हकूमत अपनी पुलिस नू पुछ के ए दस के सिखां अंदर मैं कैद हाँ जां सिखां तो बाहर ए सिपाही। सच AIR दी रखेल नहीं, समा कोई कुत्ता नहीं। ये लिखत अवतार सिंह पाश होरां दी लिखी हुई है। वैसे वो अवतार सिंह पाश जिन्हां नूं तुसीं बड़े मशहूर काव टोटे असी लड़ांगे साथी, किरत दी लुट सब तो खतरनाक नहीं हुंदी, सब तो खतरनाक हुंदा है मुर्दा शांति नाल भर जाना, आदि आदि होर बहुत सारियां कवितावां दे लई सुनिया जाणिया होएगा। अज गल क्यों करन लगे हैं, प्रोग्राम एक देश पंजाब की गल कीचे दे विच प्रीतम सिंह रुपाल होरां दे नाल सांझ पाने आ, तो उही दसणगे इस दा वृतांत। भाई सत श्री अकाल जी। जी हां
6: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੌਤਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
5: ਹਾਂਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਕਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਗਾਵਤ

0: Hey man, सदबीर औजला गीत MP3
1: सारा शहर हमें लॉइन के नाम से जानता है। मोना डार्लिंग

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji. 1674 AM.

0: by 7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian radio station.
1: Radio Hanji.
2: Stay tuned.
3: यार तू इतने इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
6: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
5: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
6: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवरस्टंच,
5: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
6: आहो जी आहो,
5: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवरस्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हां जी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हां जी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। आईएमई एडवाइजर।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी।
3: हाई ऑस्ट्रेलिया, हाई मेलबर्न, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: मोटी नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
3: ना ना

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

दिल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती। गाने हिटरों के मुंह पे जाके बजे बूम, क्लियर है विजन मेरी यारों नीनो जूम। ऋतिक नहीं फिर भी मचेगी धूम, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाँ जी, स्विंग ग्रोवर, स्विंग ग्रोवर। हाँ जी, हाँ जी, 16-74 ये नहीं है 71-72, ये है 16-74, ये है 16-74। सुनते रहो, सुनते रहो। हाँ जी, AM।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। Stand, season, baby.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1600।

0: हाँ जी
1: हाँ वे सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी
0: हाँ जी।
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
1: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Radio Haji 16748.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हेलो सत श्री अकाल जी, मैं आपकी प्यारी सी लल्ली और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो चीवर 107.9।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212 216 ओल्ड जी लोंग रोड।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: Hi, man. I'm Saiko Mirbai from Manipur. I'm a Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
2: Bale bale bale.
1: Bale bale bale.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris.
1: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister.
2: Om Shanti.
1: Being bliss mein aapka swagat hai.
2: Thank you so much.
1: Aapke homework bahut dangerous hai.
2: What happened?
1: Mein, what happened? Kya hai? Ki wo zara chup rehna mushkil ho raha hai.
2: कोई भी परिवर्तन थोड़ा सा अटेंशन रखना पड़ेगा, बस और कुछ भी नहीं करना है. भले मुश्किल लग रहा हो, रिजल्ट क्या मिलती है?
1: रिजल्ट में सच बताऊं, जब मैंने जोर से बोला ना तीन बार करो, तब हुआ काम.
2: हाँ,
1: तब तक तो तीन बार मैं ट्राई किया था.
2: वेरी नाइस.
1: हाँ, नहीं हुआ.
2: नहीं हुआ. नॉट दिस ऑल्सो. व्हाट विल हैपन? मैंने प्यार से बोला, उन्होंने नहीं किया. फिर मैंने प्यार से बोला, उन्होंने नहीं किया. फिर मैंने जोर से बोला
1: तो हो गया.
2: तो हो गया. अब ये जब मैंने देखा कि मैंने जोर से बोला हो गया, तो मेरा बिलीफ सिस्टम क्या बन गया कि जोर से बोलने से काम हो जाता है. नाउ लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड कि सामने वाला भी, स्पेशली जो वो लोग हैं जो हमारे साथ ज्यादातर रहते हैं या काम करते हैं, वो भी हमें जानने लग गए हैं.
1: फिर मैंने पूछा भी, क्या मेरे सिर्फ जोर से बोलने पे ही चलेगा? तभी आपके समझ में आएगा कि जरूरी है मुझे चिल्लाना.
2: नाउ व्हाई? क्योंकि हमें भी एक दूसरे का स्वभाव, संस्कार बहुत ज्यादा अब पता चलने लग गया है. वी ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग कि जब ये जोर से बोलते हैं, दैट इज व्हेन इट इज सीरियस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेक दैट बिलीफ सिस्टम. बी असर्टिव बट नॉट लाउड एंड एंग्री. सी रिपीटेड पैटर्न. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम चेंज हो रहे हैं तो सामने वाला भी उसी तरह से चेंज हो जाना चाहिए.
1: हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा
2: नहीं. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. टुडे मॉर्निंग यू गेट अप एंड यू डिसाइड कि टुडे आई विल नॉट गेट एंग्री. एवरीबडी एल्स डजंट नो. या तो अनाउंसमेंट करनी है फिर सुबह.
1: अरे लोग पूछ रहे हैं कि आप नाराज हैं, आप सीरियस क्यों हैं, आज आप ऐसे क्यों हैं, आप बदले हुए क्यों हैं? तो क्या मैं चिल्लाता रहूं? हाँ,
2: पर रोज वो हो रहा था ना. रोज वो हो रहा था तो आपके साथ जो नेचुरल की डेफिनेशन लगी हुई थी, अभी सडनली एक वन मॉर्निंग जब हम अलग तरह से व्यवहार करें तो वो नेचुरल की डेफिनेशन चेंज हो रही है. तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि जिस दिन हम चेंज हो, सामने वाला इमिडिएटली चेंज हो जाएगा.
1: कितना वाइब्रेंट था बंदा, क्या जान थी उसमें. पता नहीं तुम कमजोर सा हो गया, पता नहीं चुप सा हो गया, उदास सा हो गया, ऐसी बातें सुनने में मिलती
2: है. एंगर को हमने स्ट्रेंथ समझा हुआ था. जोर से बोलना, चिल्लाना, शोर मचाना, इसको स्ट्रेंथ समझा हुआ था. इसको पावर समझी हुई थी. नो मेनी टाइम्स पीपल से इफ यू डोंट नॉट गोइंग टू गेट एंग्री, दैट मीन्स यू आर वीक. एंड इवन गेट स्केयर्ड कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में आसपास, कि मैं कुछ बोलता भी नहीं ऊपर से. इफ समबडी सेज समथिंग, मैं चुप रहता हूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. देन थर्ड फियर, पीपल विल स्टार्ट टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड. फिर तो कोई भी कुछ भी करेगा एंड आई विल नॉट से एनीथिंग. दिस इज व्हाट दे विल फील.
1: नहीं है क्या, लोग जब देखते हैं कि इतना सब हो गया और ये आदमी चुप रहा, ये डरपोक है. और
2: स्टार्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड.
1: हाँ,
2: कुछ
1: तो कुछ भी बोल दो चलेगा, इसको बार बार बोलते रहो.
2: ओके. इन दोनों बातों की थोड़ी सी गहराई से चेकिंग करनी चाहिए कि एक, अगर हम चुप रहेंगे, अगर हम शांत रहेंगे, अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो हम कमजोर हैं. जो शोर मचा देगा, चिल्ला देगा, किसी के सामने वाले की बात नहीं सुनेगा, उसकी बात पर उल्टी अपनी बात जोर से बोल देगा, अपने आप को डिफेंड करेगा, वो स्ट्रांग है. दिस इज द बिलीफ सिस्टम. राइट नाउ वी डोंट नो व्हाट एवरीबडी सेज. वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ कि जब कोई परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में रिएक्ट कर देना वो इजियर है या चुप रहना वो इजियर है? रिएक्ट करना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक कर लेगा. बात आई, रिएक्ट कर दिया. उसने शोर मचाया, उससे ज्यादा जोर से शोर मचा दिया. उसने चिल्लाया तो मैंने तो हाथ ही उठा दिया. ये तो इजी है. लेकिन सामने वाले ने कुछ किया, क्रिटिसाइज किया, झूठ बोला, गलत किया, मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, और हम चुप रहे, दिस विल रिक्वायर
1: स्ट्रेंथ.
2: सो विच इज मोर पावरफुल?
1: पावरफुल चाहिए हमको या दुनिया में जीना है?
2: अब दुनिया में जीना है. दुनिया में जीने के लिए हमने पिछली बार भी, इनफैक्ट हम इतने दिनों से यही देख रहे हैं कि जीने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए.
1: मैं तो समझता हूँ जीने के लिए दो थप्पड़ मारो किसी को, अगली बार वो नजदीक नहीं आएगा.
2: नो प्रॉब्लम. एक बात आई, किसी स्टाफ ने काम नहीं किया, हमने गुस्सा कर दिया, काम हो गया, काम हो गया.
1: आसपास वाले भी डर के रहते,
2: सब लोग डर के रहते हैं, काम हो जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं. फिर टेलीफोन वाले का फोन आया, उसने कल गलत किया था, काम नहीं कर रहा था जो उसको बोला, उस पर चिल्लाया, वो काम हो गया. फिर किसी प्लम्बर को फोन किया, कार्पेंटर को फोन किया, उसने ठीक से काम नहीं किया था, उस पर चिल्लाया, मेरा काम हो गया. ऑफिस में किसी ने ठीक से काम नहीं किया, उस पर शोर मचा दिया, काम हो गया. फिर बच्चे भी गलत किया, उन पर भी चिल्ला दिया, तो भी मेरा काम हो गया. बच्चे डिसिप्लिन्ड हो गए, सब लोग मेरा कहना मानने लग गए. सिनारियो परफेक्टली वर्क्स लाइक दिस.
1: करेक्ट.
2: ये बिलीफ सिस्टम से हम रिएक्ट करते गए, काम होते गए, बच्चे कहना मानते गए, लोग मुझसे डरते गए, काम होते गए होते गए, वी अचीव्ड एंड अचीव्ड एंड अचीव्ड. लेकिन हर बार जब मैंने ये वाला तरीका यूज किया, मैंने अपनी शक्ति को गवाया.
1: शक्ति कैसे कम होगी? शक्ति तो बढ़नी चाहिए. इसको बोला काम हो गया, उसको बोला काम हो गया, उसका और मैं पावरफुल हो गया ना.
2: कौन सी एनर्जी यूज करके बोला? अगर सिर्फ बोला और काम हो गया इज फाइन.
1: नहीं, गुस्से वाली एनर्जी.
2: तो गुस्सा, हर बार जब गुस्सा किया, हर बार जब शोर मचा दिया, हर बार एक फोन उठाया, खट खट खट खट खट चिल्ला दिया दूसरे पे, काम हो गया. एनर्जी कौन सी क्रिएट की? मैंने कौन सी एनर्जी क्रिएट की? आई द बीइंग कितनी टर्बुलेंट टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट की. एंड उसका प्रूफ है कि वो टर्बुलेंट एनर्जी सिर्फ यहां नहीं डिस्टर्ब करती. उस क्षण अपना पल्स देख ले, उस क्षण अपना हार्ट बीट चेक कर ले.
1: मुझे तो पसीना भी आया था ज्यादा गुस्से में. या
2: उस क्षण अपना ब्लड प्रेशर उसी क्षण चेक करवा ले. ये तीन पैरामीटर्स तो आप चेक करवा लो उस टाइम पे.
1: कभी कभी ज्यादा गुस्से में तो हाथ कांपते हैं.
2: यस, मुंह जबान लड़खड़ाती है, शब्द बदल जाते हैं सारे. अब बात हो गई, काम हो गया, टर्बुलेंट इतना. सी इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन बॉडी. वी हैव सीन के हर थॉट का बॉडी पर इफेक्ट होता है, लेकिन ये इफेक्ट तो उसी टाइम दिखाई देता है. मतलब वो टर्बुलेंट थॉट पावरफुली टर्बुलेंट कितनी है कि उसका इफेक्ट उसी समय बॉडी पर मैनिफेस्ट हो गया सारा. अब 10 मिनट बाद बात खत्म हो गई, उतनी देर में कोई और बात आ गई, मैंने फिर वो वाला मेथड यूज किया, क्योंकि नाउ इट्स बिकम माय बिलीफ सिस्टम. एंड यू नो, नाउ दिस हैज बिकम अ सेंस ऑफ पावर फॉर मी, आउटर पावर, कि मैं बोलता हूँ काम हो जाता है.
1: सिस्टर इजी भी तो हो गया ना काम.
2: काम हो गया ना,
1: छुट्टी में काम हो गया.
2: अब जितनी अंदर पावर कम होती जाएगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी अंदर पावर कम होती जाएगी, फॉर मी टू फील पावरफुल आई विल नीड टू ऑलवेज बी श्योर दैट अदर पीपल आर इन माई कंट्रोल.
1: फॉर मी टू,
2: फिर से ध्यान से देखते, बिकॉज इज वेरी डीप और इसकी हर एक की चेकिंग होने वाली.
1: मुझे दोबारा सुनना.
2: जितना हम आज, क्यों हम चाहते हैं कि लोग हमारे कंट्रोल में रहे, लोग मेरा कहना माने, जैसा मैं चाहूं वैसा होना चाहिए. बिकॉज जब ऐसा होता है, आई एम पावरफुल. चाहे वो एक फादर है, एक हस्बैंड है, एक मालिक है, एक दोस्त है, कुछ भी, दैट साइन ऑफ पावर, दैट साइन ऑफ कंट्रोल. आई एम कंट्रोलिंग, आई एम द पावरफुल वन. सब
1: मेरे भी करते हैं.
2: हाँ हाँ. सो इट्स नॉट अबाउट मैन, इट्स अबाउट द सोल, इट्स एवरीबडी. ये क्यों? और ये बढ़ता जाएगा. ये बढ़ता जाएगा क्योंकि जितना अंदर मेरा अपने पे कंट्रोल नहीं है, मेरा अपने पे कंट्रोल नहीं है, मेरा अपने मन पर, अपने शब्दों पर, अपने हाथ पर भी धीरे धीरे कंट्रोल नहीं है. जितना अपने पर कंट्रोल नहीं, सो आई स्टार्ट बिकमिंग पावरलेस ना. एनीथिंग व्हिच इज आउट ऑफ कंट्रोल.
1: एक मिनट, मुझे एक पॉइंट बड़ा अच्छा लगा. आपने कह दिया कि मैं जब लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो उसका मतलब तो आपने कह दिया कि मुझे अपने पर कंट्रोल नहीं है.
2: नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि जब आप लोगों को कंट्रोल कर रहे हो तब आपका अपने पे कंट्रोल नहीं है. लेकिन चेकिंग कि लोगों को काम कराने का और कंट्रोल करने का तरीका कैसा वाला है.
1: अगर मेरा गुस्सा निकलता रहता है तो दैट मींस मैं वीक हूँ, मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं है।
2: हर बार बीमार हो रहे हैं हर 10 मिनट बाद। अगर मेरा शरीर हर 10-15 मिनट बाद बीमार हो, आई विल से वीक बॉडी, नो? थोड़ा सा मौसम बदले, बीमार। थोड़ा सा पानी कुछ पी लिया, बीमार। थोड़ा सा एक हवा में कुछ बदला, बीमार। आई विल से वीक बॉडी। इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है। आसपास देखो, उन लोगों के लिए भी तो वही मौसम बदला था ना, वो कैसे ठीक है सभी? डॉक्टर बोल से वीक बॉडी, अपने को स्ट्रांग बनाओ। सिमिलरली बात आई, बीमार। फिर कुछ हुआ, फिर बीमार। फिर थोड़ा सा तो बात नहीं भी आई तो भी बीमार। कहेंगे इनको तो बिना बात के गुस्सा आता है, क्योंकि अब मेरी बीमारी इतनी बढ़ती गई। आई 10 मिनट रही, फिर 10 मिनट ठीक हुई, फिर 10 मिनट रही। धीरे धीरे वो 10 मिनट बीमारी 15 मिनट एक्सटेंड होती रही। देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंगर स्टार्टेड बिकमिंग माई वे ऑफ लिविंग, माई नेचर। फिर लोग
1: बीइंग एंगर। अब समझ में आया मुझे।
2: बीइंग एंगर, देन आसपास के लोग कहेंगे इनको तो बिना बात के भी गुस्सा आता है। मतलब बात कुछ चाहिए ही नहीं इनको अब गुस्सा करने के लिए, ऐसे ही गुस्सा कर देते हैं। क्योंकि आई हैव गॉट इनटू द पैटर्न। पहले क्या हुआ था, बड़ी बात आई, गुस्से का तरीका यूज किया। फिर धीरे धीरे देखा रिजल्ट मिला, काम हो गया। आई सेड दिस इज नाइस, मेरा काम हो जाता है, सब लोग मेरी बात सुनने लगते हैं। आई स्टार्टेड यूजिंग इट मोर ऑफन। धीरे धीरे फिर छोटे छोटे काम के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया। फिर मेरा बन गया वो संस्कार।
1: नॉर्मल बात करते करते भी हो जाता है।
2: देन बिना कोई काम के भी इरिटेट हो जाएंगे। अब जितनी बार हुए, टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट की, मन पर भी असर हुआ, शरीर पर भी असर हुआ। रिश्तों पे तो खैर प्रभाव पड़ा ही पड़ा, लेकिन मेरी अपनी पावर, एवरी टाइम आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम हेल्थ टू डिजीज। एवरी टाइम, अगर मैं साल में 5 बार बीमार पड़ती थी पहले, अब मैं 20 बार साल में बीमार पड़ूं, तो इस साइन द बॉडी बिकमिंग वीक। इसी तरह अगर मेरे को दिन में 1 बार गुस्सा आता था, आज अगर मेरे को दिन में 5 बार गुस्सा आ गया, माइंड बिकमिंग वीक, एंड विच मीन्स पावर कम होती जा रही है। जितनी, अब ये बहुत डीप साइकिल कैसे बन जाएगा, ये डीप एडिक्शन कैसे बन जाएगी, जितनी पावर अंदर कम होती जाएगी, उतना द नीड टू हैव पावर ओवर अदर पीपल विल इंक्रीज।
1: फिर से कहिए।
2: जितनी पावर अंदर कम होती जाएगी, उतना द नीड टू हैव पावर ओवर अदर पीपल विल इंक्रीज टू फील पावरफुल।
1: माय गॉड,
2: सपोज आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ, ओके? इफ आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ, आई नो आई एम पावरफुल। पावरफुल इन द सेंस कि मुझे अपने पे गारंटी कि अगर परिस्थिति अच्छी नहीं भी होगी, आई विल बी फाइन। दिस इज पावर। पावर नॉट ओवर सिचुएशन, पावर नॉट ओवर पीपल, पावर ओवर माई सेल्फ। ये गारंटी, ये अगर अपने पे गारंटी है कि इट मींस मेरे पे अपने पे गारंटी, मेरी हेल्थ ठीक रहेगी, अगर मौसम ठीक नहीं भी हुआ तो आई एम फाइन। जब इतना पावरफुल होंगे तो लोगों के ऊपर कंट्रोल करना ये पावर नहीं होगी मेरे लिए, बिकॉज आई नो आई एम पावरफुल। लेकिन जब अंदर पावर कम होती जाएगी, लोगों के ऊपर पावर, ये एडिक्शन बढ़ती जाएगी। अब जितनी ये बढ़ती जाएगी और उनको कंट्रोल करने के लिए फिर हम और ज्यादा रिएक्ट करेंगे, उतना अंदर की पावर
1: और कम होती जाएगी।
2: नाउ दिस इज अ डाउनस्लाइड, एंड दिस इज अ वेरी फास्ट डाउनस्लाइड। वी आर नॉट इवन गोइंग टू रियलाइज इट्स गोइंग टू गो सो फास्ट। ऐसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, एंड जितनी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, उतना लोगों को कंट्रोल करना, ये एडिक्शन बढ़ती जाएगी। जितना
1: लोग एडिक्शन यूज कर रहे हैं,
2: इट्स एन एडिक्शन, नो? इट्स अ वेरी डीप एडिक्शन दैट पीपल शुड बी इन माई कंट्रोल। आई नीड टू चेक दिस वेदर आई हैव दिस एडिक्शन। लोग मेरा कहना माने, लोग मेरे अनुसार चलें, जो मैं कहूं जैसा मैं कहूं वैसा होना चाहिए, दिस इज अ वेरी डीप एडिक्शन। हम तो अपनी सिर्फ ऊपर की एडिक्शन देते हैं,
1: तो दिमाग हिल गए सुन गए वर्ड।
2: दिस इज वेरी डीप एडिक्शन।
1: एडिक्शन है,
2: ये एडिक्शन है, क्योंकि फिर आपको हर बार चाहिए ना, हर एक के साथ चाहिए ना, फिर आप यू आर नॉट एबल टू लेट पीपल बी द वे दे वांट टू बी.
1: उसके बिना जी नहीं सकता है बंदा, फिर
2: अनइजी हो जाएगा ना. आप किसी के भी साथ होंगे, यू विल वांट देम टू बी द वे यू वांट देम टू बी. किसी के भी साथ, अब वो हर एक के साथ हो जाएगा, क्योंकि अब वो मेरी एडिक्शन,
1: मेरे जैसे कि एक और सामने मिल गया वो वाले एडिक्शन वाला,
2: बहुत बड़ी टक्कर है. दिस वी हैव टू चेक, ये बहुत बड़ी एडिक्शन है, सिचुएशन और लोग. एंड मोस्ट ऑफ अस हैव दिस एडिक्शन टुडे. रिएक्शन अलग अलग तरह करेंगे, लेकिन ये एडिक्शन हम में से आज मेजोरिटी को है कि परिस्थिति और लोग मेरे अनुसार होने चाहिए. क्यों? क्योंकि जब परिस्थिति और लोग मेरे अनुसार होते हैं तब मैं खुश. चाहिए क्या मुझे जीवन में? खुशी. खुश रहने के लिए क्या मुझे चाहिए होगा? लोग और परिस्थिति मेरे अनुसार हो. तो मेरा पूरा जीवन का फोकस क्या हो गया? टू मेक सिचुएशंस एंड पीपल बी अकॉर्डिंग टू मी.
1: And control them all
2: control
1: the time.
2: Sara din control hai. And right from controlling a little child to controlling everyone around me. Ab spirituality is focus ko shift karti hai. First with the understanding ki aap logon ko control kar hi nahi sakte. Haan, kyunki hum shor machayenge, chillayenge, ya kyunki hum position mein hai. You know, suppose aap boss hai, aapka staff hai, aap position mein hai. आप फादर हैं, आपके बच्चे हैं, आप पोजीशन में हैं, राइट? आप बड़े हैं एज में, दूसरे छोटे हैं, आप पोजीशन में हैं.
1: लिहाज है
2: नहीं, पोजीशन है. ये आपके एक पोजीशन है, पोजीशन ऑफ एज, पोजीशन ऑफ रिलेशनशिप, पोजीशन प्रोफेशनली. इस पोजीशन की वजह से हमारे आसपास के लोग डर से, मजबूरी से,
1: आउट ऑफ रिस्पेक्ट,
2: नॉट आउट ऑफ रिस्पेक्ट,
1: नहीं,
2: आउट ऑफ फियर.
1: ओल्ड बिलीफ सिस्टम भी है ना, बड़ों ने कुछ बोल दिया चलो चुप रहो,
2: लेकिन दैट्स नॉट रिस्पेक्ट. अगर बड़ों ने कुछ बोल दिया और मैं चुप रही लेकिन अंदर से मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं रिस्पेक्ट नहीं किया उस टाइम. फिर
1: तो मुझे अगर कोई छोटा बोले तो मैं तो बोलूंगा कि ही इज डिसरिस्पेक्टिंग मी.
2: यस, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा. सी, आपने कुछ कहा,
1: अगर उस छोटे ने मुझसे बोला कि डैडी आपने ये जो बात बोली अच्छी नहीं लगी, तो मुझे वो अपनी तरफ से सही है,
2: सही कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है,
1: और मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं समझू.
2: नहीं, लेकिन आपको वो डिसरेस्पेक्ट इसलिए लगेगी, सपोज आपने कुछ कहा, अगर
1: बोलेगी नहीं, बीवी नहीं बोलती है, देख लेते हैं आप ज्वाइंट फैमिलीज में, डैडी से ऐसी बात नहीं करते बेटा, बड़े है ना, उन्होंने बोल दिया ना, अब चुपचाप शांति में रहो, बड़े कुछ बोलते हैं तो चुप रहो. तब अगर मुझे डायरेक्ट मेरा बेटा मुझे बोले कि आपने क्या कह दिया मुझे, ये कर दिया मुझे, ऐसे थोड़े आप बात करते हो, मैं भी तो बड़ा हो जाऊं, तो फिर मुझे डिसरेस्पेक्ट लगता है कि भाई छोटा बड़ों को बोल रहे हैं.
2: परफेक्ट. क्योंकि हमारी रिस्पेक्ट की डेफिनेशन क्या थी? रिस्पेक्ट की डेफिनेशन यहां हम चेक करेंगे. आप फादर हैं, वो बच्चा है, या आप बॉस हैं, वो स्टाफ है, आपने बोला, उसने माना, ये रिस्पेक्ट.
1: या बर्दाश्त कर गया या चुप रह गया.
2: तो आपने बोला, उसने माना, माना और किया, राइट? आपने बोला, उसने किया, दिस वॉज रिस्पेक्ट.
1: मेरी इज्जत रखी, मेरा मान रखा,
2: तो रिस्पेक्ट. अब इसको देख लो, आपने कुछ बोला, मैंने कर दिया. क्यों कर दिया? आउट ऑफ फियर, मजबूरी, या फिर क्योंकि मेरी भी ये डेफिनेशन है कि अगर नहीं, अगर उल्टा कुछ बोल दो या करने से मना कर दो तो दिस इज डिसरिस्पेक्ट. ओके, अब ये हमारी डेफिनेशन है. तो हमने करना शुरू कर दिया जो हमें किसी ने कहा, लेकिन करते करते हम खुश नहीं है वो करते.
1: हाँ, मजबूरी से करता है,
2: मजबूरी से करता है आदमी. अब मजबूरी से कर रहे हो मतलब मैं कर रही हूँ, अंदर खुश नहीं हूँ, मेरा मन नहीं है, ये सही भी नहीं है, मुझे मालूम है इसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकल के आने वाला, लेकिन अब इन्होंने बोला है तो करना पड़ेगा. ये हर टाइम मेरे ऊपर अपना जो भी है इंस्ट्रक्शन वो इन्फोर्स कर देते हैं, एंड आई हैव टू डू इट. ये सारी थॉट्स एनर्जी कौन सी है? हैवी, हैवी. मैं कंटिन्यूसली सोचूंगी, मैं काम करूंगी, आपका कहना भी मानूंगी, लेकिन अंदर टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट हो रही है. आपको लग रहा है यू आर वेरी हैप्पी कि आपने कहा, मैंने माना, गिव्स यू अ सेंस ऑफ पावर, कंट्रोल. लेकिन सपोज जितनी देर, एंड वो देर हो सकती है या तो 10 मिनट, 10 दिन, 10 साल या जीवन भर, लेकिन उतनी देर मैंने आपके लिए थॉट्स कैसे क्रिएट की, इनकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। इन्होंने बोला मैंने किया, हर बार अपनी बात मनवाते हैं, हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं ऊपर से, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्या करें, आई डोंट हैव चॉइस, मजबूरी है, करना पड़ता है। दिस इज नॉट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मीन्स प्योर पावरफुल एनर्जी, क्लीन ब्यूटिफुल थॉट्स फॉर द अदर पर्सन। ये एक एक थॉट बहुत अच्छी नहीं है, मैं खुश नहीं हूं, मैं उदास हूं और आप मेरी उदासी का कारण है। दिस इज हाइएस्ट फॉर्म ऑफ नेगेटिव एनर्जी। व्हेन आई होल्ड समबडी एल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मी बीइंग इन पेन, पेन मीन्स आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट एवर आई हैव डन, दैट पर्सन इज गेटिंग नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम मी, दिस इज नॉट रिस्पेक्ट। लेकिन हमने रिस्पेक्ट को उस लेवल पर तो देखा ही नहीं ना। हमारे लिए रिस्पेक्ट क्या थी, मैंने बोला हो गया, मैं रूम में आया, उठ गए, जैसे मैंने कहा करते गए, मीन्स दे रिस्पेक्ट मी, दे फियर मी। फियर एंड रिस्पेक्ट एक टाइम पे नहीं रह सकता है, फियर एंड लव एक टाइम पे नहीं रह सकते हैं, ये दोनों ऑपोजिट एनर्जीज हैं। जो हमसे डरते हैं वो हमें रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे आते ही या हमारी थॉट से ही उनकी एनर्जी डिस्टर्ब्ड हो जाती है। एनर्जी ऑफ फियर इज वन ऑफ द हाईएस्ट नेगेटिव एनर्जीज, एनर्जी ऑफ फियर, मुझे डर लगता है इनसे, दिस इज नॉट रिस्पेक्ट। आपको अगर औरों से रिस्पेक्ट चाहिए तो मतलब दूसरे मेरे बारे में कैसा सोचे। तो ये जो हमने डेफिनेशंस बनाई हुई है, अब जितना, अब ये आपके लिए क्या रिस्की है, एक आपको कंटिन्यूअस मुझसे ये एनर्जी मिलेगी, अगर वो कोई बहुत बड़ा डिसीजन था तो कंटिन्यूअस आपको वो एनर्जी मिलेगी। जब हमें औरों से नेगेटिव एनर्जी मिल रही होती है वो हमारी बैटरी को डिप्लीट कर रही है। कहना तो मान लिया, मुझे लगा आई एम पावरफुल, लेकिन अंदर से माई पावर इज गेटिंग डिप्लीटेड, वन because my sense of power has become dependent on other people, and second that other person is continuously sending me negative thoughts. ye dikhai nahi dega, ye kisi ko dikhai nahi dega ki kaise ho raha hai, lekin dusron ki vibration

0: लेवल पे वो शुरू से था।
1: अंदर भरा पड़ा है और जैसे ये बड़ा होने लग गया बच्चा और थोड़ा इंडिपेंडेंट होने लग गया, शादी होगी और बड़ा हो गया, तब वो उसका एटीट्यूड बदलेगा और तब उसको ना जानते हुए भी ना चाहते हुए भी वो जबरदस्ती के अपने बाप को या जो भी उसके ऊपर दबाव डालता था वो डालने लगेगा।
0: बिकॉज फियर ऑफ पोजिशन से वो बाहर निकलने लगा है। पहले पोजिशन थी ना, एज या पोजिशन, रिलेशनशिप, उस पोजिशन से अब वो बाहर निकलने लगा है। किसी न किसी कारण की वजह से वो आपका बात मानता गया, कोई भी, एनीबडी। अच्छा, इसमें भी रिस्क क्या आएगा? रिस्क देखो कितना है। जब तक लोग हमारा कहना मानते रहे, हमारे अनुसार चलते रहे, वी थॉट एवरीथिंग वॉज इन माई कंट्रोल। अब क्योंकि आपने कहा मैंने माना, फिर आपने कहा मैंने माना, दिस स्टार्टेड मेकिंग यू फील पावरफुल। जहां पावर बाहर किसी और पर हमें लगेगी, वहां एक थॉट हमेशा रहेगी ऑफ इनसिक्योरिटी, विल दे ऑलवेज रिमेन इन माई कंट्रोल। दिस इज वेरी सटल, क्योंकि जहां एडिक्शन होगी किसी पावर की, कंट्रोल की, वहां ये इनसिक्योरिटी हमेशा रहने वाली है कि क्या ये हमेशा मेरे ऐसे कंट्रोल में चलेंगे? अगर कल इन्होंने मेरी बात मानी नहीं तो अब हमेशा सामने वाला हमारी बात नहीं मानेगा। जिस दिन उसकी मजबूरी खत्म हो जाएगी, जिस दिन एज बच्चों की बड़ी हो जाएगी, जिस दिन उनकी डिपेंडेंसी हमारी किसी न किसी चीज पर वो कम हो जाएगी, या जिस दिन कोई ऐसी बात होगी जो वो मान ही नहीं पाएंगे। कई बार ऐसे भी होगा कि कोई ऐसी बात आप उनको कहेंगे जो वो जस्ट नहीं मान सकते।
1: सिस्टर, मैं किसी को जानता हूँ जो बहुत प्रॉब्लम में थी वो औरत, मतलब पति उसको दबाता ही रहता था। शादी के 20 साल बाद She was waiting for the daughter to get married. जैसे शादी हुई दूसरे दिन वो घर छोड़ के चले गई और डिवोर्स किया। कब से बर्दाश्त कर रही थी?
0: मजबूरी थी।
1: हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा ना,
0: टूटा
1: नहीं, रीजन क्या था? हाँ, कि बेटी की शादी।
0: Yes, so वो बात टूटी ना, आपकी मजबूरी खत्म हुई। जैसे ही वो लाइन क्रॉस हुई, आपकी डिपेंडेंसी, चाहे वो सोशल प्रेशर, कितनी रीजन्स हो सकते हैं, जैसे ही वो टूटा तो आपने वो छोड़ दिया। लेकिन वो तो 20 साल बाद हुआ ना, दैट्स ओके। 20 साल बाद हुआ, 20 साल कैसे बीते वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 20 साल बाद मेरा कहना नहीं माना और इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, 20 साल कैसे बीते, दिस वी नीड टू चेक।
1: 20 साल पति का कहना मानती रही, बर्दाश्त करती रही,
0: कहना मानती रही भी ठीक है, लेकिन 20 साल ना, आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, 20 साल कैसे बीते? वाइफ के लिए दर्द में, अनहैप्पी। तो हम अगर, जैसे आपने भी किसकी पोजीशन
1: देखी, पति के लिए एडिक्शन,
0: नहीं एडिक्शन भी ठीक है, लेकिन डिप्लीशन,
1: अच्छा,
0: दिस वेरी इम्पोर्टेंट। हम वो वाला एस्पेक्ट नहीं देखते, हम देखते हैं वाइफ बिचारी, मजबूर, पिटी, विक्टिम, क्योंकि हमारे हिसाब से जो कंट्रोल कर रहा है वो पावरफुल है, जो कंट्रोल हो रहा है वो विक्टिम है। एक्चुअली बहुत बड़ा विक्टिम वो है जो कंट्रोल कर रहा है। विक्टिम ऑफ हिज पावरलेसनेस। उसकी एनर्जी कितनी डिप्लीट हो रही है सारा दिन, इवन इन दिस पोजिशन। वॉट यू
1: से, तो उस पर कंपैशन करना चाहिए।
0: एब्सोल्युटली कंपैशन, लेकिन अगर हम उस पोजिशन में हैं तो आज हमें चेंज होने की जरूरत है। अगर हमारी डेफिनेशन ऑफ पावर, हमारी डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन, definition of control, and very important, like you said, definition of respect, even definition of love. If you love me, do this for me.
1: नहीं, but आप मुझे थोड़ा फिर से explain करेंगे वो क्यों victim है?
0: अच्छा, ये husband है, ये wife है।
1: हाँ?
0: Husband बोलते गए, wife करती गई।
1: हाँ?
0: जो बोला वो किया, जो बोला वो किया, खुश होकर नहीं किया, मजबूरी से किया।
1: हाँ।
0: तो जो मजबूरी से करता रहा वो भी 20 साल, ऐसा हाँ। नहीं थोड़े देर थोड़ा दिन, 20 साल दुखी रही, कहना मानती गई, कहना मानती गई, दुखी रही, एनर्जी कौन सी रेडिएट की? अनहैप्पीनेस। दिस इज द स्टोरी ऑफ द वाइफ, एंड एवरीबडी विल हैव मर्सी फॉर द वाइफ। बिचारी विक्टिम है, अत्याचार उस पर हो रहा है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन है ना ये पे। हस्बैंड किस पोजिशन में है? हस्बैंड आउटवर्डली ये फील करे आई एम वेरी स्ट्रांग, मैं जो बोलता हूं मेरा कहना माना जाता है, लेकिन

0: एक्चुअली द बीइंग की पूरी पावर, सेंस ऑफ पावर सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है कि वो मेरा कहना मानेगी. जब पावर दूसरे पे डिपेंडेंट हो गई, आपने ये लास्ट टाइम कहा, जितना दूसरे पर डिपेंडेंट है पावर के लिए उतनी अपनी पावर कम होती जाएगी. वो भी ठीक कि अपनी पावर कम होती जाएगी. व्हाट अबाउट 20 साल जो उसने उनके प्रति दर्द की थॉट्स क्रिएट की. आप देखो, अगर कोई एक व्यक्ति भी हमारे लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है, वो हम तक नहीं पहुंचेंगे. वो हमें पहुंचती हैं, और जो ये वाइब्रेशन हमें पहुंचती है वो हमारी बैटरी को डिस्चार्ज, बिकॉज दे सकिंग एनर्जी. मेरे को कंटिन्यूसली आपसे नेगेटिव मिले तो वो मुझे डिसएम्पावर करेगा. 20 साल हस्बैंड को वाइफ से दुख, उदासी की वाइब्रेशन मिल रही थी, वो हस्बैंड की पावर को अंदर से कम करती जा रही थी. अंदर से पावर कम होती जा रही थी तो आउटर पावर की एडिक्शन बढ़ती जा रही थी. दिस बिकेम वेरी विशियस साइकिल.
1: तो ये हस्बैंड क्या हुआ?
0: ये हस्बैंड अपनी वीकनेस का एक बहुत बड़ा विक्टिम है. मास्टर मीन्स हु इज इन कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ, एंड विक्टिम मीन्स जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं.
1: दिस इज अ फैंटास्टिक पॉइंट. मैं जरूर इमीडिएटली नेक्स्ट एपिसोड में ये बात करना चाहूंगा कि मास्टर कौन है और विक्टिम कौन है. थैंक यू सो मच.
0: ओम शांति.
1: ओम शांति. थैंक यू सो मच. नमस्कार.
2: इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वॉन्ट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, राइट टू अस एट awakeningwithbks@gmail.com or call us on 0999974555.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सूट 500 रुपए दे सूट, 500 रुपए दे कॉटन दे सूट, फिर उसकी मम्मी
1: बस
2: वधिया वधिया सुनिया कल फेर ते दा पूरियां मौजां होईयां हां
0: बहुत ऐसी इतना जंक फूड खादा ना मैं मतलब पूरे महीने का खा लिया होना एक
2: बार नो नेवर से नेवर आज तो 3 सितंबर ही है कोई नहीं सही के नहीं वेरी गुड वेरी गुड
3: नाले लगदा ही हुंदा जंक फूड ज्यादा खा लिया अगले दिन फिर जी का
2: फिर बंदा
3: के बंदे आ देखो
2: सही कर ला ऐसे नहीं टले तू थानू भी नहीं टलन देना आपा आज आज सियाने सियाने नहीं इकट्ठे ना बंदे
0: नहीं गल तो सही है उत्ते पिज्जा बहुत खादा पर आके मेरा फिर पिज्जा खाने मन
3: नहीं किया था क्या ही ना मैं और...
2: अच्छा नहीं ये ना पिज्जा की प्रॉब्लम है जिन्ना खा लो उन्ना होर मन करता ना खाने
3: पिज्जा दी नहीं वीर प्रॉब्लम
0: बिल्कुल
2: सही प्रॉब्लम
3: पिज्जा थोड़ा फेवरेट फ्लेवर केड़ा पिज्जा दा
0: पिज्जा तो डिपेंड करता कितों ले रहे हैं ओ सिसा बनाल फिर पिज्जे दा फ्लेवर
2: इस तो पता लगता है इन पिज्जा खाना पसंद है ना यही जवाब होता है सही पिज्जा लवर का
3: वुड फायर वाला खादा तुम
2: हां मैं मेनू तो बहुत बढ़िया लगा थोनू बढ़िया लगा वुड फायर
0: ठीक हुंदा लेकिन इतना नहीं
2: ठीक ओके ओके ओके हां
0: जी
2: पाइनएप्पल पसंद है थोनू पिज्जा दे कि नहीं चीज स्प्रेड हो हल्की जी पेस्टो सॉस हो चलो नी ठीक हो गया तो की सुनाओगे
0: एक चुटकला
2: लिया जी लिया
0: पत्नी सवेरे बहुत काम च बिजी सी पति सोचा अज ना मैं आप ही अपना ब्रेकफास्ट बना के खाना पति ने फ्रिज खोली चार ब्रेड दे टुकड़े लिते बटर नाइफ लिता ते कौली च कौली चटनी सी ते उन्हें वो लाके खा ली ते ओदी पत्नी पूछ दिया भी नहीं पति ने खा ली ते फिर पत्नी 2 घंटे के बाद आंदी है ते पूछ दिया ए कौली च ना मैं मेहंदी भ्योंती सी पता नहीं किथे गई ते पति चुप चाप करके उथे बैठा गया
2: पता आई गल करके मैं किचन च नहीं वड़दा मेरे नाल सच हो सकदा
3: इंट सो समझ के गा गया
2: सही है पुदीने दा टेस्ट ज नहीं सही आ रहा
3: वेरी टेस्ट ऑन दिया
2: वाह थैंक यू थैंक यू
3: जमाना
2: बदल गया पर आप अपना जमाना अगे तोड़ते रहने गल कर दे अर्नव दे नाल हेलो अंकल ही हो गए अंकल ही है चलो हां दिल ही रख लेना है भरावां दा आ तो गल ना सजना होर सुनाओ किदां ठीक ठाक कोई चक्कर वाली गल ही नहीं की सुनाओगे सानू फिर अज भाई
0: अज सुनाऊंगा एक बजारत
2: ओह लियाओ जी लियाओ हुण असीं ढिल्ले हो जांगे लो जी लो
0: बारो आया बाबा लदी शेर तड़ंगा एक लोदी
2: हैं
0: बारो आया बाबा लदी शेर तड़ंगा एक बोदी
3: अच्छा बारो आया बाबा लदी शेर

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਫੁੱਲ ਘਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1674 AM।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
5: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।